हाँ जी, तुसी हुणे सुणे सी गीत, हुण पेश करन जा रहे हैं एक रिपोर्ट। यह है जैन जी दी बगावत ते सियासत दी नवी तस्वीर। इसनू लिखिया है ज्योति मल्होत्रा ने। पिछले एक हफ्ते दौरान भारत भर के हज़ारा विद्यार्थियों ने पूरे मुल्क का ध्यान अपने वल खिंचया ते इस विच सफल भी रहे हैं। उन्होंने डर ते काबू पाउंदिया अते अपनियां चिंतावां लांबे रखदिया भुख हड़तालां कीतियां, रोस मार्च कढ़े, खुद ते हसे, अंबेडकर, गांधी अते ची गवेरा दियां तस्वीरां हथ लहराईयां ते सब तो वड्डी गल समुचे सियासी तबके नूं चौकस कर दिता। कांग्रेस भी पूरे उत्साह दे विच है। राहुल गांधी ने तो इस हफ्ते के शुरू विच प्रधानमंत्री मोदी की रिहायश अगे धरना भी दिता, जिथे उन्हां अते प्रियंका नूं हिरासत विच लैके कुछ समय लई दो वख-वख थाणियां विच रख्या गया। वीरवार शाम तक इंडिया गठजोड़ जिन्ना कु भी ये बचा है एकजुट होया ते एक बस विच सवार होके गांधी स्मृति वल रवाना हो गया। जेकर अंदोलन कर रहे विद्यार्थियों की पहली सफलता मोदी सरकार खिलाफ अपने महीना भर चले संघर्ष नूं निरंतर जारी रखना रही है तो दूजी वड्डी प्राप्ति विरोधी धिर दे नेता दा ध्यान इस पासे केंद्रित करवाउणा है। ये दूजी प्राप्ति भी कोई छोटी मोटी गल नहीं है। राहुल ने नीट मामले ते विद्यार्थियों के हक च प्रदर्शन करन दा वादा कीता सी, पर फिर वो अपनियां गर्मी दियां छुट्टियां बिताउण लई चले गए। वो एक महीने बाद वापस परते तां उन्हां नूं अहसास होया कि देश दे होना हिस्सों विचों छात्रों की गूंज प्रोग्रामां दा वो असर नहीं हो रहा सी। इस एक महीने दौरान पंजाब समेत पूरे देश विच